चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश के नाल अगे वधदे हुए चकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच चकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 की लड़ाई लगी तो फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तो उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियों नूं यह जकारा गजा के वंगार पाई सी कि कलगियां वाले का जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौंकी ते। और यह हकीकत है कि वह जिहड़ा जकारा हिंदू कैप्टन ने छड़िया उसनों सुन के भजदे हुए फौजी फिर वापस आए और इस चौंकी ते आके फिर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा किया। आओ ये कलगियां वाले की बख्शिश की हुई नाद ये जकारा सारे रल के आप गजाइए।

ग्रस्त दे चमेले ग्रस्त दी चिंता इउं प्रतीत हुंदा है चौहीं पासी अग्नि दे भांबड़ मचदे हन पर बचदे कौन हन रखे केड़े जांदे हन सुरक्षित कौन हुंदे हन साहिब पात्र।

झूठ ना बोली संगत विच खलोता है। हाथ जुड़ गए। बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं की थी। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे हुए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है। वो तेरी मां नहीं वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनिया ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर। तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगीधर पातशाह भी यही आख रहे ने कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है। ये भी एक रहत है।

वणज करन लगी। 24,000 श्वास रोज दे साडे खर्च होंदे हन, असी कदे नहीं विचारिया भई कितने कु सफल होए हन, कितने कु असी तंदियां विच उजाड़ दिते हन। साडी हट्टी लुट्टी जा रही है, श्वास जाया जा रहे हन, पर असी बेखबर होके विचर रहे हां। इसलिए हजूर बख्शिश कर दे हन, भाई तू जाग, ए जितने तेरे पसारे हन किसे काम नहीं आउन वाले। मनुख ने दो प्रसादे छकने हन, वस्त्र पहने हन और रहना है। इतनी को लोड़ मनुख दी है, पर पसारे कितने पसारी बैठे।

ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ, ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਨ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मेनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी भी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं मेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मेनू बचा सकता इसे आसरे मैं यह आस यो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के ये सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगण से निगाह ही नहीं पे ते जिन्ना चिर अपने औगण से निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा धन गुरु हराय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता कि महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनूं महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनूं महाराज के बूहे ते लै चलो वह कहन लगे तैनूं दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नूं आके नाम जपण निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहा कहिंदा नहीं मैनूं हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनूं वेख लैण सियाणिआं ने बहुत कहा तैनूं वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनूं वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें कहा चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते ले आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्हें विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्हें इकले हो जाण विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना से कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने कहा विश्राम कर रहे ने यह कहने लगा मैनू इथे प्यार रहन दो जिस वेले वो बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछा क्यों भाई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वो कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हरराय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पे वैदा हकीमा ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया महाराज वेखद्या सार छेती उठन का यतन करन लगा साथियों ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा किया मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहना है ये कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहता सा तुसी मैनू वेख लो साहबा ने मुस्कुरा के यही गल कही भलिया लोका तैनू वेखणगे वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कहड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोण वरतिया जरा फुट के बाहर आ गया तो तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नू कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते वह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वह जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वह वैदा ते हकीमां नू नजर नहीं आउंदे साहब जी वह तो तुम देख सकते हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा तो ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया तो गल की साहब हस पे कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए यह सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप से ध्यान ही पै जाए ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आस एह आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मूह नाल मैं लोगों की निंदा करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोगों दी बुराइयां कढ़ियां पर कर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोगों के घर वेखना ध्यान देना लोगों के घर वाल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वाल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वाल लेकिन केवल शरीर तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वाल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वाल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वाल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे पराए घर वाल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने वडियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बणै काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर दे बंदा कातल ते खूनी उदो बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुणा कराउंदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू

इस वेले सारे कन्या वाले सत्य पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सत्य पातशाह जी की आराम का तले जा खलो गया। उतार मुंह करके तकन लग पाया, वेखन लग पाया, चाकन लग पाया, इधर उधर वेख के कि मैनू को देखता ता नहीं, मैनू को तकदा ता नहीं। कलगिया वाले सच्चे पातशाह दे विश्राम गृह दे थले खलो के उपर नू एक आवाज मार दी, एक सद मार दी, एक होता मार

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे आख्या, कबीर कुकरवान तो मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप में सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल उसे सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नू इन्ने प्यारे होंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे हो, बाबा मैनू हाली ये अवसर प्राप्त।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु, जिहदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क जाता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्ना नू मिलदा जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही हुंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ते असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ए ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैणा उहदे नाल मन ते जोड़िए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचदे ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक वारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहिब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातियां डड्डा जलवासी। जे तीर्थ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाणा किस तरह है इह भी नहीं पता। साहिब जी उपदेश करदे हन, कायां अंदर अमृत सर साचा,
काया कहते ने शरीर नू। एक अमृतसर इस धरती ते है पंजाब दे विच, एक अमृतसर साढ़े शरीर दे अंदर है। सर कहते ने सरोवर नू, साहब जी कहते ने काया अंदर अमृतसर साचा मन नावे पाए सुभाई है। नाना किस तरह शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच नावे, मन नावे। जे मन नहीं नाता भाव मन बाणी नाल नहीं जुड़िया ते किसे भी तीर्थ ते जाके इशनान कर लो ओदा कोई लाभ नहीं। गल ते मन दी है, मन नावे पाए सुभाई है। शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच, ते फिर असर होवेगा। तो सतगुरु जी उपदेश करदे ने ओदा नाम दुखां नूं दूर करन वाला है, पर जिस तरह दवाई खाते बगैर आराम नहीं, इसे तरह जदू तक नाम मन विच नहीं वसदा उदों तक दुखां दा नाश नहीं हुंदा। ते जिहड़े नाम नाल मन जोड़ लैणगे उहनां दे दुखां दा नाश होवेगा। आओ एक बारी करो सारी रसना पवित्र।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखा नु दूर करने वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधी, अठे पहर उदी आराधना करिए, उदे नाल मन जोड़िए ते दुखा दा नास होवेगा। डॉक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है, ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नु देखिया,

दुख पंजन तेरा, नाम जी दुख पंजन तेरा नाम। पंडित लालचंद ने गुरु से पर किया, महाराज एदे कोल गीता पढ़वाओ। ते सतगुरु जी हस पे, ते हस के कहन लगे, लालचंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उन्हूं लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उन्हूं लेके आया है जिहड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन, ते कहंदे लालचंद नूं ने, चंगा लालचंद जिन्नू भी लैके आ गया, ये गुरु नानक का घर ऐसा है, इत्थे जिहड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनू ओहो जिहा फल मिलदा है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी, ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी, खूंडी, ओ खूंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी, मेर भरी निगाह दे नाल छज्जू चीवर वल तकिया, ते मुस्कुरा के कहंदे ने, छज्जू ओ भाई सिखा, पंडित जी की इच्छा है कि तू गीता सुनावे। भाई सिखा, इन्हां दी इच्छा पूरी कर, पर सुन, कली गीता पढ़नी नहीं, नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद गुरु की मेहर की नजर होई, सिर ते गुरु साहिबां ने अपनी छड़ी रखी, ते ओ छज्जू चीवर जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन, वाल खिलरे, शरीर दी सुध नहीं, रंग ही बदल गया, गुरु दी शोभ मिली, चेहरा ही होर हो गया। जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन, बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने, हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया, और फिर चरना ते मत्था टेकया, और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया, हाथ जोड़े ते कहन लगा, दाता तेरा शुक्र है, तू मैनू नवा जीवन दिता है, शरीर दी सुध दिती, दुनिया दी सुध दिती, दुनिया दी सोझी दिती, ते पातशाह हुण हुक्म कर। साहब जी कहन लगे, छज्जू गीता पढ़ के सुना, नाले अर्थ करके सुना। ते छज्जू चीवर कहंदा, दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है, हुण ते तू हुक्म कर, ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी दुनिया दा हाल दस दिया, इतनी तेरी मेहर हो गई। ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा, गीता पढ़ता है, नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है। ओ ज्यो ज्यो गीता पढ़ता है, ते पंडित लालचंद कोल बैठा रोई जांदा, ज्यो ज्यो सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन। ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया, ते लालचंद हुण उठया,
ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਆ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਰੋ ਨਾ, ਉੱਠ, ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਸਦਕਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 7:10 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ 7 to 8 ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

मंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,